कुलाए कुमाए अगाए कदाए लोगो अंतुया अदाम लिकाया सभी अदा तमाहिया आओ लुबा